से है। वक्त को रिश्वत देकर जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ, ये बात भी वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका, कह ना सका।